न जो बनवाती मोहे अनाथ की करो समाय। खोजत खोजत पै बरागन प्रभु दर्शन को ओम।

तिन को सगल चकाइये, कहत नाम देव बार कया भरमो, ए संजम हर पाइये। मार बार जैसे नीर बाला, वेल बाला कर हला, ज्यो करंक निसनाद बला, त्यो मेरे मन रमैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अत रंग रूड़ो मेरो रमैया। राव ज्यो तरनी को इंद्र बला, कुशल बास जैसे भवरला, ज्यो कोकल को अंब बला, त्यो मेरे मन रमैया। चकबी को जैसे सूर बला, ना मान सरोवर हंसला, ज्यो तरनी को अंत कंत बला, तो मेरे मन रमैया। बर को जैसे कीर बला, चातक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बला, त्यो मेरे मन रमैया। साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू ढीठला, सगल पवन तेरो नाम बला, त्यो नामे मन बीठला। पहल पुरिये पर डरक बना, तांचे हंस जग सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना। पहल पुर साबरा, थून पुर सुदामरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी में सागरा। राव नाचंती गोपी जना, नये ते वैर कना, तुरका तुरक नाचा, परमिया चा, केसवा बचोनी अये मैये, एक आन जियो। बिंदी उबकले संसारा, परम परम आए तुम चे द्वारा, तू कौन रे मैं जी नामा, हो जी आला ते निवारना, जम कारना। पत पावन माधो बिरद तेरा, तन ते वह मुन जन, जिन ते आयो हर प्रभ मेरा। मेरे माथे लागी ले तूर, गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हो ते दूर। राव तीन का दीन का दयाल माधो, गर्भ पर हारे, चरण सरन नामा बल तिहारे। तनासरी भक्त रविदास जी के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम सर दीन दयालन तुम सर, अब प्यार क्या कीजै। बंदरी तोर बचनी तोर, मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। हूँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण करन भोल, कारण कबन भोला। राम बहुत जन बिछरे थे माधो, एव जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आस लग जीवो, चिर पियो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अभिलोकनो, सर्व बाणी सो जस पूर राखो, मन सो मत उकर करो, चरण हृदय तुर तरो रसन अमृत राम नाम पाको। मेरी प्रीत गोविंद स्यों ज्यो, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे, मैं तो मूल महगी लई जी सटे। राम सा संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिना भगत नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हर स्यो, पैज राखो राम राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। राव नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो केसरो ले छटकारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो भाते, नाम तेरो तेल ले मैं पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए, पिहो जियारो पवन सगल आरे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार ठारे सगल जठारे। तेरो किया तुझे किया अर्पू, नाम तेरा तू ही चबर टलहारे। दस अठा अठ सठे, चारे खानी ए बर्तन है सगल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगत भगता की त्रिलोचना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भुली गुवारी, दो किरत सुकिरत थारो करम री। रहाओ संकरा मस्तक वस्त्र बस्ता, सुरसरी स्नान रे, कुल जन मरन मदे मिलवो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफिस्टरे, विश्व का दीप स्वामी, तांचे रे स्वार्थी, पंखी राय गुरड़ तांचे बाधवा। कर्म कर अरना कम पिंगलारी, अनक पातक हर रहता, अनक पातक हरता, त्रे पवन नाथरी, तीर्थ तीर्थ परमता, लहे ना पार रे। कर्म कर कपाल मभी सटरे, अमृत ससि तेन लक्ष्मी, कल पत्थर शिखर सनागर, नदी चे नाथंग। कर्म कर खार मभी सटरे, तादीले लंका गढ़ पाड़िए, रावण बन सल बिसल आनत खिले हरे। कर्म कर कसोटी मिप

प्रभै दयाल न व्यापे माया कोट गगनास हर एक त्याया निर्मल पै शरीर जंतुरी नाया मन तन पै संतोख पूर्ण प्रपाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सवाया सलोक गुण गोविंद गोपाल गुर आसगा गुर बोथे गुर नारायण पूर नारायण कर दया समरथ गुर नानक पतित पतित धारण भौजल भिखम सगा गुर बोहते तरियाम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी धन धन गुरदेव जी संग हर जपे गुर कृपाल जपै ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीनो अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टांत एको सन्यंत एको बरतंत एको नर हर नाम दान जा चंत नानक दयाल पुर कृपा कर है हिक सेवी इक संभला इक हर इक पै अरदास नाम बखर धन सांचया नानक सची रास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूरन इक एह सब किश आपे आप दूजा कहां कहे आप करो प्रभ दान आपे आप लिहो आवण जाना हुक्म सब निहचल।

तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। जा देखो ता दुख की रासी, अजो न पत्याय निगम पै साथी। गौतम नार उमापत स्वामी, शीस धन सहज पगामी। इंदु तन खल बद कर मारियो, बड़ो निलाज अजू नहीं हारियो। कह रविदास कहाँ कैसे कीजे, बिन रघुरात शरण का की लीजे। एक ओंकार सतनाम करता परख, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सह भंग गुर प्रसाद, राग टोडी महला चौथा घर पहला। हर बिन रह न सके मन मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रम गुर मिले। बहर न भव जल फेरा रहा, मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी। हर नैनो हर प्रभ हेरा,

रहो, जिसके से फिर तिन्ही संभाले बिन से शोक संताप, आदे राखे जने अपने हर होए माई बाप, जी जानतोए मेहरबाना दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख भंजन जाका बड़ प्रताप, टोडी महला पंजवा, स्वामी शरण परे दरबारे, कोट पराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे रहाओ, खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ विचारे, साध संग परमगत पाइये, माया रच बंध हारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर

कछु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ आपन राम ना चिन्हो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगी जो मन न बसायो छोड़ जाहे बाहु चित लायो सो संचो जित भूख तिसायो अमृत नाम तो सन

बढ़े पागुर अपना पायो, गुरमुखो हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महानंद कीर्तन हर सुनिया, कौ नानक जिन ठाकुर पाया, सब किस तिसके ग्रह में आया, टोडी महला पंजवा, घर चौथा दोपदे इक्यों का।

महाराज रोगात बाहू से लुबड़ियो ने भागड़ो भाई संजोरे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले पराशत मिट्यो रे जाको लैनो महाराज री गाठड़ियो जन नानंगर बास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजमा घर पंजमा दोप दे क्योंकार सतगुर प्रसाद

चित रहाओ। प्राणाधार जीवन धन मोरे, देखन को दर्शन प्रवनीत। बाट घाट तो सा संग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मल, हर कृपा अपनो कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आज जुगात भक्तन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसल नहीं। निमक ही अरे ते अपने भक्त को पूर्ण दान रहाओ। खोबो राम परम राख, मेरे प्रीतम अंतर जामी। सुगड़ सुजान कोट राज नाम, धन मेरे अमृत दृष्ट धारो। प्रमान आठ पैरस न गुण गावे, जसपुर अगावे समृत कान। तेरी शरण जीअन के दाते, सदा सदा नान।

संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास शांत रह सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंचमा हर हर पतित पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहा सुंदर सुगण चतुर सब बेतारित सास दास निवास भक्त गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी परम भूम बीजन को खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पंजमा माई माया शल तिनकी अगन बेकी छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियाणप बहुचत राई दोय कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानक देह का ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भक्त राचे जन नानक हर सिमर दैन पै मल टोडी महला पंजमा माई चरण गुर मीठे बड़े भाग देवे परमेश्वर कोट भला दर्शन गुर डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिन से सब डीठे अस्थिर भय साच रंग राते जन मरन बहुर ने पीठे बिन हर भजन रंग रत जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजमा साध संग हर

जन्म मरण काटे गुरबचनी बोहड़ न संकट द्वारा, नानक शरण गई स्वामी की पुने पुने नमस्कारा। टोडी महला पंजवां माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिन से सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल विख नासे सिमरत पावन, तन मन सुख देख स्वरूप पूरन पई आसा। दर्शन भेटत उदरी उतरी भुख, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गई सुख सागर जन्म मन फिर गर्व न धुख। टोडी महला पंजवां हर हर चरण हृदय उर तारे, सिमर स्वामी सतगुर अपना कारज सफल हमारे रहाव। पुन दान पूरन पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगमा पारे। जो जन परमेश्वर अपने किन्ने तिनका बौर कछु न बिचारे, नाम रतन सुन जप जप जी मार नान कंठ मझारे। टोडी महला नौवां इक्योंकार सतगुर प्रसाद, कहो कहां अपनी अदमाई उर्जियो कन कामनी के रस। नै कीरत प्रभ गाई रहाओ जग झूठे को साच, जान कै ताको रुचि अपजाई। दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू होत न संग सहाई, मगन रहो माया मैंने दिन छुटी न मन की काई। कै नानक अब नाही अंतगत बिन गुर की शरणाई। टोडी बाणी भगतां की क्योंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्भा कोई बोले दूर, जल की मांछली चढ़े खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो।

संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई, एकाच सी वर्त करहे काहे को तीर्थ जाई। भनत नाम देव सुकृत समत पै, गुरमत राम कह को नाम बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच्छे, नाम देव सुकृत समत पै, गुरमत राम कह को नाम बैकुंठ गए।

मिलायो, खिन किंचित कृपा करी जगदीशर, तब हर हर जस त्यायो, जन नानक हर पेटे स्वामी, दुख में रोग गवायो, बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे रहाओ, जो किश करो सो आपे

अगन कुंट में उर्द लिव लागा, हारख उदर मझारा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन, हर अंत छावन हारा, जाके हृदय बसिया मेरा हर हर, जिस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाइये, हर जप नाम नाम ने आधारा।

मंगत पीखिया बाए रहाओ केसर कुसम मिर गमे हरना सर्व शरीरी चढ़ना चंदन भगतां ज्योत इने ही सर्वे परमल करना कहा पट भांडा कह न कोई ऐसा भगत।

मानड़ा काय करे आप नड़े कर हर रंगो की नामाने सौ नेड़े तन कमलिए बार क्या टुंडे पैकियां दे सलाइयां नैनी भाव का कर शिगारो ता सुहागन जानिए लागी जा सौ तरे प्यारो यानी बाली क्या करे सातन कंत न पावे बिनकर्मा कर्ण भला करे बो तेरे सातन मैल न पावे बिनकर्मा किछ

आधार, गुना उसके सफल आफू तेरे जन देखे दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले सब सुख तेरा नाव, गुरमिल नानक बूझिया सदा एक सगाओ।

तिन असवारसी, सुखी करे पसाओ दुख बिसारसी, सहसा मूले नाहे सर पर तारसी, तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया, अमृत हर का नाव देवे दिखिया, चले सतगुर पाए पवे न पीखिया, जानसो मैल हजूर दूजे निवे किस, दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस, छुटे ताके बोल साहिब तदर जिस, कले काने आप जिस, नाही दूजा मते कोय, ढाए सारे सा जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीश नदर करम होए, सूही महला पहला भांडा अच्छा सोए, जो तिस भाव सी भांडा आत्मलीन, धोता अच्छा न होए सी, गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी, एत द्वारे धोए तो

हर रंग को लुचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुगद नर कोरा होए, जेसो लोचे रंग न होवे कोई, नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस रंग हर रंग समावे, सुई महला चौथा जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सहज समाए, हर रस जन चाखो रे भाई, तौकत अनत साध लभाई रहाओ, गुरमत रस राखो उर तार, रस रस राते रंग मुरार, मनमुख हर रस चाख्या न जाए, हमें करे बोती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे, सूही महला चौथा घर छेवा इक ओंकार सतगुर प्रसाद, नीच जात हर जपत्या उदम पत भी पाए, पूछो बिदर दासी सुते, कृष्ण उतरिया घर जिस जाए, हर की अकथ कथा सुनो, जन पाई जित जैसा, दुख भूख सब ले जाए रहा, रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक

खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े हर नाम देओ लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख अठसठ तीर्थ तिन तिल कढ़ाए जन नानक तिन को अंदिन परसे जे कृपा करे हर राय सूही महला चौथा तिनी अंतर हर आराध्या जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा तिनकी बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे हर त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहा तुर भगत जना को बख्शिया अमृत भगत भंडारा मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे तिस हालत पलत मोकारा से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा तिनकी सेवा ते हर पाइये सिर निंदक कै पवे शारा जिस कर बिरती कोई सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चौ पीढ़ी आद जुगाद बखिली किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधिये तिथे हर मित सहाई गुर की कृपा ते हर मन बसे होरत बिदलया न जाई हर तन संचिए पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहा सतसंगति संग हर तन खटिए होरते होरत उपाय हर तन किते न पाई रतने का बापारिये हर रतन तन बिहाजे कच्चे के बापारिये बाक हर तन लद्या न जाई हर तन

चौथा घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहेब गुणी निधाना तुमरी महिमा बर ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना मैर हर ना हर हर नाम स्थर सोई ज्यो पावे तू राख मेरे साहिबा मैं तुझ बिन अवर न कोई रहाओ मैं तान दिवान तू है मेरे सो

सुनाइए। बुरा भला तू सब की सूझे, जेहा को करे तेहा को पाइये। मेरे साहिब तू अंतर की विद जाने, बुरा भला तू सब की सूझे, तुद पावे तिवे बुलावे रहाओ। सामो माया शरीर हर किया, बिच देही मानुक भगत कराई। इक ना सतगुर मेल सुख देवे, इक तू नदर करे तेरा को होवे। बिन नदरी नाही को भेख,

जिनके अंतर बसिया मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पै जिन हर नाम त्याया तिन पवित्र परम पद पाए मेरा राम हर जन रोग पै गुरबचनी जिन

कवन रूप दृष्टियो बिन सायो कते गयो ओ कते आयो रहाओ जलते उठे अनक तरंगा कनक भूमन की ने बोरंगा बीज बीज देखियो बो प्रकारा फल पाके ते एक अंकारा सहस कटा में एक आकाश खटपुटे ते ओही भी प्रगास भरम लो मोह माया विकार भ्रम छूटे ते

सच्चामृत चलायुन कर सच फरमान सदा निश्चल रव रहा सुपुरख सुजान गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम गोचर लाख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालिका पीतर तरिया यान।

अंदर बेसन कोर साध भले नाते आ चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म जलाएंदा जग धंधे लाया एक आपे ही आप लाइन गुरते सुख पाया दैद शिव मन थावदा गुठा कराया नावे नो सब लोच दी गुरमति पाया गुरमति पाया तो लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

आस चलिया काया कुमलाणी कुआर कन्या जैसे करत शिकारा क्यों रलिया माने बाजों पतारा कागु डावत पूजा प्राणी कहे कबीरे कथा।

संग चलत है हम पी चलना दूर गवन सरू पर मरना क्या तू सोया जागे आना तै जीवन जग सच कर जाना रहा जन जियो दिया सो रिजक अंबरावै सब कट पीतर हाट चलावै कर बंदगी छाड मैं मेरा हृदय नाम समार सवेरा जन्म सरानो पंथ ना सवारा सांझ परी दै दस्यंदियारा कहे रविदास नदान दीवाने चेत सनाई दुनिया फन खाने सुहे ऊचे मंदर साल रसोई करी फुन रहण न होई तन ऐसा जैसे कास की टाटी जल गयो कास रल गयो माटी रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा ओए भी लागे काड सवेरा ओए भी लागे काड सवेरा कर की नार उड़े तन लागे ओह तो भूत भूत कर पागे कहे रबदास हवे जग लूटिया हम तो एक राम कहे छूटिया एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग सुही बाणी शेख फरीद जी की तब तब लो लो हाथ मरो रो बाबल होई सो सौ लो रो तैसे मन में किया रोस मुझे अवगण सह नाही दोष तै साहब की मैं सार न जानी जो बन खोए पाछे पछतानी रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली अपने पीतम के हो बिरह जाली परे बिहून कते सुख पाए जाहो कृपाल ता प्रभु मलाए बिदन खोए मुंद अकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभु साध संग मेली जा फिर देखा ता मेरा अल्हो बेली बाट हमारी खरी उड़ीनी खन्यो तिक्की बहुत पीणी सुपर है मार्ग मेरा शेख फरीदा पंथ समार सवेरा सुही लालत बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की बेला पर सरबर जब उछल तब तन दुहेला हाथ न लाए कुसुम्बड़ है जल जासी ढोला रहा एक आपी ने पातली सह केरे बोला दुधा खनी दुधा थनी ना आवई फिर होए न मेला कहे फ्री सहेलियो सौ लाए सी हंस चल सी दुमना है तन ढेरी थी सी एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर

तेरी कवन बढ़ाई जो तू दे सो कहां स्वामी मैं मूर्ख न जाई तेरे गुण गावा दे बुझाई जैसे सच मैं रो रजाई रहा जो किश हुआ सब किश ते जो किश हुआ सब किश तुझते तेरी

मन की परती तो मनते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई। जीवन मन को संसार बेख बहु न मरे ना जम पेख कर ही मैं सब कोटन दान सतगुर दिखाए गया अभिमान सादी लागा सर ध्यान अंधन गावे को नाम। इस जुग मैं है बड़ी आई पाई पूरे गुरते नाम त्याई जय देखा तै रहा समाई

मेरे मन हर गुण हर उचर हो महतक लिख लिखे गुण गाए मिल संगत पार परो राव काया नगर मैं राम रसूतम क्यों पाई उपदे जन करो सतगुरु सेव सफल हर दर्शन मिले अमृत हर स पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख देखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बेख

पदे कर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद दरी आवे तेसो मोह क्यों मिलिए प्रभु नासी तो ये कर कृपा मोहे मार्ग पावो साध संगत के अंचल लाभ हो क्यों तरिये विखिया संसार सतगुर बोहत पावे पार आओ पहुंचो लारे माया दे हर के पक्ष सदा थिर से हर शोक ते रहे नरारा से रूप रे आप गुरु रखवारा पाया भीड़ माया सरप अंगा में पचे दीपक देख पतंगा सगल शिकार करी नहीं पावे जाओ कृपालता गुरु मलावे तो फिर उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मोल के हीरा मिले न पाया हर का मंदिर तिसमें लाल गुर खोलिया पड़दा पई गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल जिन चाखिया तसी आया साध ज्यों गूंगा मन मैं बिस्माद अंत रूप सा नदरी आया जन नानक हर गुणिया समाया बला बल महला पंजवा।

हर हर स्वामी सुखकामी अंत मंगल रस गाना नवल नवतन नाहो बाला कवन रसना मुख पाणा मेजी मेरी शेष सोही देख मोही सगल सहसा बन हरा मेरी सेज सोहे देख मोही सगल सहसा दुखरा नानक प्यापे मेरी आस पूरी मेरे स्वामी परंपरा बराबर महला पंजवा शांत मंगल एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सलोक सुंदर शांत दयाल प्रभ सब सुखानंद पियो सुख सागर प्रभ भेट नानक सुखी हो ते हो जियो शांत सुख सागर प्रभ पाइयता जब हो वै भागो राम मन मन बजाइए हर चरनी लागो राम छोड़ छाण विचात्री दुरम तपो त्यागो राम नानक पौ सनाई राम राय थिर हुए सुहागो राम सुप्रवताज कथ लागिए जिस बिन मर जाइए राम लाज ना व्याज्ञान मति दुर्जन भरमाइए राम पात्र पावन प्राप्त त्याग करे को कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गईये दो चार नरसना राम प्रभ भगत वसन से बही काया का करसना राम प्रम ओही दुख न जानी कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर बर जे चाहना बेटा किरम बस भसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बरागन राम चंदन।

पाए पवा पेग तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कापट नित हर भज बवरे राव जे तू जाचा सुत्र पुण जोगी कह कबीर के सौ जाग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण सारे कंज प्रीत न उपजा जनको जन कहा कर विचारे राव त्रिग तानो त्रिग तानो त्रिगे माया त्रिग तुम मत मुद फनी इस माया को दृढ़ कर रखो बांधे आ बिछने क्या कीती कह लेवा दे प्रपंच झूठ गुमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया कांड दाना बिलावल श्री सरूर पीतरे आचा गुण अनूप परम ज्योत प्रखोतमो जाकर रेख न रूप रे मन हर भज प्रमत जो जग जीवन राम राव आप कछु न दिसई न दिस जात जैब जय बिनसै तई जैसे पुरवन पात विद्या करमाया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मन का भ्रम गया गोविंद लिबलागी जीत सुन समाध्या गुरु साखी जागी राव काशी तुन उपजै तुन काशी जाई काशी बूटी पंडता तुन कहां समाई त्रिकुटी संत मैं पेखिया घट हूं कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माए ते आगी आप ते जानिया ते समाना कहो कबीर जानिया गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जाकर सुजन कंडोला देव मानो सब सुखला देव राव तावे मत जब समय पेख कुटल कांड जब खोला देव बारम बार माया ते अटका।

जैसी तू आस करा मैं तैसी को आस कराई, किस किसी कह हथ नाई मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सुगुर बुझ बुझाई, जन नानक आस तू जाना है। हर दर्शन दे हर दर्शन दिताई, गुण मल्ला चौथा ऐसा हर सेविया ने त्याई है, जो खर मैं करो सब करे मिनासा, जे हर त्याग और की आस की जाय, तार ने फिर सब काल गुवासा, मेरे मानो हर सेव सुधाता स्वामी, जे सेव्या सब भुखलासा, मेरे मानो हर उपर की जा प्रवासा, जय जाइए त नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखा जाता सारा, जे अपनी बिरथा कौरा पै ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत कटासा, अपनी बिरथा कौर अपने स्वामी पै, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पै कही है, अवरा पै कह मन लाज मरासा, जो संसारा कह कुटुंब मित्र भाई दिस मन मेरे ते सब अपने स्वामी मिलासा, जिदन उनका स्वाव हो न आवै तित नेड़ा को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरा दुख सुखासा, तिसका प्रभाषा क्यों की जा मन मेरे, जो अंत अवसर रख न सुखासा, हर जब मंत गुरदेश हर जप मंत गुरु उपदेश लै जापो, तेरे अंत छाई जन पीच तासा, ते नानक नाम जपो हर संतो, छुटन का साचा प्रवासा, गुण महला चौथा, हर सिमर सदा आनंद सुख, अंतर शांत शीतल मन अपना, जैसे सख्त सूरत पहु जलता, गुर सस देखे लै जाए सब तपना, मेरे मन अनगन त्याय नाम हर जपना, जहां का तुझ राखा सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना राहो, जा मैं सब निधान सो हर जब मन मेरे, गुरमुख खोज लो हर रतना, जिन हर त्याय तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिनके चरण मरो हर दसना, शब्द पछाण राम रस पाओ, तुम संत भयो बड़ बड़ना, ते जन की वड्याई हरा वधाई, ओ घटै ना किसा की कटाई, एक तिल तिल तिलना, चिते सुख पावा मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुड़ना, तन नानको हर दान इक दीजै, नित बसा हृदय हरी मोहि चरणा, कौन महला चौथा, जितने शाह पातशाह अमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ पाओ दूजा जान, हर अवनाशी सदा धरने चल, जिस मेरे मन भज प्रवान, मेरे मन नाम हर भजी, मेरे मन नाम हरि भज सदा दीवान, जो हर मैर पा गुरु बचनी, ते जेड़ और नाई किसी दा तान रहाओ, जितने धनवंत कुलवंत मिलखवंदी स मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम कचाण, हर सतन सदा से मन मेरे, जित हर दरगाह पावै तू मान, ब्राह्मण खत्री शूद वै चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावै सो प्रवान, जो चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा, त्यो सत्संगत मिल पद प्रवान, ओ सबते ऊंचा सबते सूचा, जाके हृदय वसै भगवान, जन नानक तिनके चरण पुखाला, जो हर जन नीच आत सेव कान, गुण महला चौथा, हर यंत्र जामी सब तै वरता, जे हर क्राय त्याग कराइया, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो जो तुदनों सब तू रख लई है, मेरे मन हर जाप हर नित पढ़ैया, हर बिन को मार जवान न सका, ता मेरे मन कायत कढ़ैया राओ, हर प्रपंच किया सब करता वे चापे, अपनी जोत रही हर एक को बोला, हर एक बुलाए गुरपुरा, हर एक दिखैया, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चुरैया, ने कपट सेवा की जाय हर केरी, ता मेरे मन सर्व सुपैया, जिस दे वास सब किश सो सब तू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्याई है, जन नानक सोर नाल है तेरा, हर सदा त्याई तू तू लै छड़ई है, गुण महला चौथा, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तापत है, जो त्रिखावंत पे नीर, मेरे मन मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रजाना, मेरे मन अंतर की पी रहाओ, मेरे हर प्रीतम की को बात सुनावा, सो भाई सो मेरा वीर, मेल मेल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के लिए, सतगुरु की मात धीर, जन नानक घर आस पजाओ, हर दर्शन शांत शरीर, छक्का एक राग गुण मल्ला, पंजवा चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भोगता रहाओ, सुनतो करता भेगत करता, दृष्टो करता दृष्टो करता, उत करता परलो करता, व्याप्त करता लिप्तो करता, भक्तो करता भूत करता, याप्त करता जात भी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुरु प्रसाद नानक साम दृष्टा, कुण महला पांचवा, फाक्यो मीन कब की न्याई, तू उर्ज रोक संभाय ले, भक्त हर सास लेख ले, तो उदरे हर गुण गाय ले, मन सम छोड़ वाय ले, अपने रहन को ठहर न पावा, काय पर कह जाय ले रहो, ज्यो मैंगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग पर कुटुंबाय ले, ज्यो पंखी कतर होए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर त्याय ले, जैसे मीन रसन साध बिनस्यो, ओ मूठो मूड लोभाए ले, तू हुआ पंच वास वैरी कै, झूठे पर शरणाए ले।

दरगाह मुख उजले नामे सगले कुल उदरे नाम हमारे कारसी नाम सांगे मनवा गीत नामे हम निरपा भय नामे अमर जावन रहे गुरपुरा मेले गुणतात को नानक सहज निवास गुण महला पांचवा निमाने को जो दे तुम्हार सगुरुखे करता दान कर मैं रखना ठाकुर को सदा नाम शिकार ऐसो ब्राह्मण माते आए खड़े उकट जगत सहाय रह रंग राहु जाका एक समान कीट है सगुर पुराण भी हो पूछना मत तर जो कुछ करे जो आप करे जाका अंत न जान सको आपे आप रंजन सोए आपे आकार आप नकार काट काट काट सब काट आधार नाम रंग भक्त पहलाल जस करते संसान हाल नाम रंग जन रहे गाए नानक तिन जा लागे पाए गुण महला पांचवा जाका संगे मन निर्मल जाका संग हर हर सिमरन जाका संग कृ गुणास जाका संग हृदय प्रवास जाका संग हृदय प्रगास रे से संतन हर के मेरे मी

नारायण प्रकट कीनो प्रताप नारायण संत को माई बाप नारायण सत्संग नारायण बारंबार नारायण गायन भस्त गोचर गुण मिली नारायण ओट नानक दास कई गुण मल्ल पंजमा।

के अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार खन मैं रुलता खा गुण आलो है भी साचा गुण हर सजाई बिरहार अपने दास रखी कृपा धार नानक प्राण धार गुण महला पांचवा अचार्य कथा मानूप आत्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ नाय बूढ़ा नाय बाला नाय सुख नहीं जमजाला नाय बिनस नाय जाय आजुगादि रह समाये नाय सुस नहीं सीत नाय सुषम ना स्मीत नाय सर्क नहीं सोग सब इसका करण जोग नाय स्वभाव नहीं समाये ब्रह्म प्रभुताया पाप उनका स्लेप न लागा कटकट अंतर सदी जागा तीन गुणा सख्त पाया महा माता की अचाया अछल भेद पे अछल छेद पे दयालु दीन दयाल सागृपाल ताकि कथमित कछु न पाए नानक तक बल बल जाए गुण मल्ला पांच मंग संत का बलहारा जाओ संत का संग्राम गुण गाओ संत प्रसाद के लोग सब गए संत शरण बुट भागी पाए राम जपत कछ भी न व्यापाए गुरु प्रसाद अपना प्रभु जा पाए राम पार जब हुए दयाल साधु जन की करे वार काम क्रोध स्थान ते जाए नाम राम रत्न सामने आए सबर जन्म ताका प्रवाण पार नेचर कर जान सबर जन्म ताका प्रमाण पार्वण निकट कर जान पाए भक्त प्रभु कीर्तन लागे जन्म जन्म का सोया जागे।

करी का तूला के जले जैसे घास का पूला, कहो कबीर तवी नर जम का जम का ढूंढ में लागे गोंड, आकाश गगन पताल गगन चौथ सगंग रहायले आनंद मूर सदा प्रखो तुम घट बिन सह गगना जाए।

रे महावत तुझ डारो काट सितरावो कालो साठ हसन तुरा तर ध्यान वाह कर दवस भगवान क्या अपराध संत है कीना बात पोट कुंजर को दीना कुंजर पोट लै लै नमस्कार बूझी ने काजी अंधियार तीन बार पतिया परलीना मान कठोर अजुना पतीना कह कोई रमरा गोविंद चौथे पद्म जन की जिंद गोंड नाए मानस ना देव नाए जति कहावा सेव नाए जोगी ना अवधूता नाए समय न काहू पूता यह मंत्र में कौन वसाई ता कांत न को पाई राव नाए गिरही ना उदासी नाए राजन भीख मुगासी नाए पिंड नाती नाए ब्राह्मण नाए खाती नाए तबा कहावा सेख नाए जीवन मरता देख स्मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मान दो मिटवाया कहो कबीर राम की अस जास कागत पर मिटे न मांस गोंड तुगे ताट टूटे तागे निखुटी पान द्वारू प्रचर कावे कान कूच बिचारे फुए फाल।

खैवो नाय मुड़िया अन्न तापे जाए, एक तो मंदिर एक तो बाट, हमको साथ उनको खाट, मुंह पलोस कमर बद पोथी, हमको चावन उनको रोटी, मुंडिया मुड़िया हुए काय मुड़िया बूट की टेक, सुन अंदरी लोई बेपीर, इन मुंडियन भाई शरण कबीर, गोंड खासम भर तो नार नरो वै उस रखवारा और रखवारे का हुए बनासु, आगे नर किया भोग विलास, एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी रहा, सुहागन कल सुहै हार, संत को बिख बिकसै संसार, कर श्रृंगार वह पखियारी, संत की ठिठकी फिरै विचारी, संत भागो पाछा पर गुर प्रसादी मारू डर, साकी ओ पिंड प्रायण, हम को दृष्ट पर त्राखड़ायण, हम तिसका वो जान्या प्यो, जब मुहे कृपाल मिले गुरुदेव को, कबीरा बार परी संसार कै अंचल लरी, गोंड ग्रह सो बाजा करे नाय, आत पहिया खुदे जाए, जावा कै अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागा दुख, तन सुहागन माप वीत, तब पीसर डोलै चीत, रहाउ सुहागन कृपन की पूती, सेवकता जग संसूती, साधु का ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार, सुहागन है अत सुंदरी, पग नेवर छान को छान हरी, जौलक प्राण तोले संगे, नायता चली बेग उठ नंगे, सुहागन पवन त्रै लिया, दस अट प्राण तीत रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेद, बड़े भूत राजे हैं छेते,

हर नैनो की पुत्री, हर हर कर्त पूतना तरी बाल कादनी कपट भरी, सिमृत द्रोपत सुत उदरी, गौतम सती शिला निस्तरी, केसी कंसमत जिनकी या जी धन काली को दिया, प्रणव नमाय सो हरी, जा जत भय अवदा टरी, गोंड पैरों पूसी तला तावे, खर बानो छार उड़ावे, हों तो एक रमैया लै हो, आंदे बदलाव दै हो रहो, शिशु करते जो नरत्या, भर चढ़े डोर उठ मुकावे, महामाही की पूजा करा, नरसा नारोय औतराय, तू कहिए तिहि आद भवानी, मुक्ति भरिया का

खाती थी, लेकर ढेंगा टंगरी तोरी, लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा मां दे तौले मल चढ़िया, तो देखा था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सोपिया, तो देखा था रावण सेती सरवर हुई, कर की जो अगवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना, दोहा ते ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूजा देवरा मुसलमान मसीत, नवे सोई से व्या देरा नाम सीता, रागूंड बाणी रवदास जी की कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होया हार, सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पेत माता, जीत मुकंदे मर्त मुकंदे, ताके सेव को सदानंदे रहाउ, मुकंद मुकंद हमारे प्राणंग, जा मुकंद मस्तक निशानंग, से मुकंद करा बैरागी, सोई मुकंद दुर्बल धन लादी, एक मुकंद करे अवकार, हमरा का करे संसार, मेटी जा तुए दरबार, तुई मुकंद जो जुग तार, ओव जो ज्ञान हुआ प्रकाश, कर कृपाली ने कीट दास, करो दास अब तृष्णा चूकी, जा मुकंद सेवा ताहू की गोंड, जे उठता सठ जे ओठ सठ तीर्थ नावै, जे द्वासला पूजावै, जे कूप तटा देवावै, करा नेंद सब व्यथा जावै।

अज्ञान शरण हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। कहूं जीणा उचलता कहूं जाए प्याले लोभी जीणा तिर न रहता चारे कुंडा पाले। मन लखाए मंडल में आई जीवन सहजै माई एक चले हम देखन स्वामी भाई बलंती आई। ना किसी का मईत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणत नानक जे तू दे मैं अंते हुए सिखाई। राम करी मल्ला पहला सर्व ज्योतरी पसरई जय देखा तय नर हरी जीवन तल निवार स्वामी अंध कु माया मन गाड़िया क्यों करो त्रो पार स्वामी राव। जय पीतर कड़ पीतर वस्या बार काय नाही तिनकी सर करे निसाहेव सा चिंत मन माई। आपे नीडा आपे दूर आपे सर्वड़िया प्रभु सतगुरु मिला अंधेरा जाए जय देखा दरा समाये। आंतर सह संभार माया नैनी लक्ष बाणी प्रणत नानक दस दस प्रतापेगा प्राणी। राम करी महला पहला जे दर वसै कम दर कही है दरा पीतर दर कमला है जिस दर कारण फिर उदासी सो दर कोई आए कहे। किन बेद सागर तरिया जीव त्या न मरिया राव दुख दरवाजा रूखवाला सादे सादे पट जड़े माया जल खाई पानी कर बांध्या सतकाय आसन पुरकराए। किंते न माय अंतरा जाण्या तुम सरनाई अवर हरे उच्चा नहीं कहना मन में रहना आपे जाना आप करे। जब आसांदे सा तब ही क्यों करे कहा आसा भीतर है नरसा तो नानक एक मिलाए। इन सागर तरिया जीवत्या उमरिया रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरे सिंगी बाजा लोग सुने पत झोली मंगण का ताई भीख्या नाम पढ़े बाबा गोरख जागा। गोरख सो जिन को उठाली करते बारह लागा राव पानी प्राण पर बंद रखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को धरती दी नीते गुण विसरे। सिर सतकर जोगी जंग पीर पुरश बहु तेरे जे तिन मिलंद कीर्ते अंगा तमन सेव करे। कागत लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जामू क्या करे। राम करी महला पहला सुन मा छिंदरा नानक बोला वसकत पंच न करे न डोला ऐसी जुत जोग को पाले आम तरह सगले कुल तारे। सो अतूत ऐसी मत पावे सुन समात समावे राव भिख्या भाए भगत पै चलै होवै सो त्रिव संतोख मुलै तां रूप आसन पावे सच नाम ताड़ी चेत लावे। नानक बोलै अमृत पाणी सुन मा छिंदरा उधुनी साणी आसा वै निरास बुलाए नेचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अग सुनाए गुर चले की संत मिटाए दीख्या दारू भोजन खाए जे दर्शन की सोजी पाए। राम करी महला पहला हम डोल

विनाशी हूँ, तुझको बलहारे आओ सिसा जोगी अर जंगम एक सजनी त्या परस पैर से जिते स्वामी अखर जिन को आया जब तब सज कर्म न जाना नाम जपी प्रभु तेरा गुरु परमेश्वर नानक भेटो साचा शब्द वीर राम करी मल्ला पहला सुरती सुतर लाया एक तन कर तुला लंगे जे तो अंतर भाई तिस तू राखो एनस दीवा बनाया साको ऐसा दीवा नी इतरा है जे दीवा सब सोजी पाई राहो अच्छी मिट्टी सोजी हो ताका किया माना सोए करनी ते कर चको ढाल ऐथा उथा निभी नाल आपे नत करे जा सोए गुरमुख बिरला पूजा कोए तिरकड़ दीवा निचल होए पानी मरे न बुझाया जाए ऐसा दीवा नी इतराए डोला वाउन वड्डा होए जापे जाऊं सिंहासन लोए खत्री ब्राह्मण सूत के वैश नेत्र पाया गणी सांस ऐसा दीवा माले कोई नानक सो पारंगत होए तो पाम करी मल्ला पहला

कोई ना वह तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए, कोई कड़ा बे, कोई पड़ा भेद, कोई कतेव, कोई उड़ा नील, कोई सुफेद, कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई माछा भिस्त, कोई सिरगंधु, कोई माछा भिस्त, कोई सुरगिंदू, कहो नानक जिन हुकम छाता, प्रभु साहब कतन भेद जाता, राम करी मल्ला पंजमा, पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत तरल जाए, माटी माटी होइए, ग्रोह बनहारे की कमन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, है तो चलत प्यारा, अगरी के छ खबर न पाई, रोमन हार भी उठ सदाई, पर मौके बांधे बांध सुन भै पकड़ाए आंदो।

अनुरूप अन तन मन शीतल निवारी अनुरूप प्रगटे संसारी क्या देव जा सब कुछ तेरा समरार जाऊं लखबेरा तन मन जीव पिंड दे साजे आ गुरु कृपा ते नीच निवाजे आ कुल कुवारा मैल बुला जैसा सत्या दिखलाया को नानक सब पड़ा टूटा कहो तेरा तू मैं मन बूटा राम करी मल्ला पांजवा सेवक अपनी लायो सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगरी चिंता निवारी तिस गुरु कौ सत बलहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे न तूरे सतगुर राऊ मेहमा जागी गैर गंभीर होए निहाल जिस दे होए निहाल दे जिस दीर जाके बंधन काटे राय सो नर भोर न जो नी पाए जा कै अंतर प्रगटे ताको नाई दू संताप लाल संत पाला भरिया सगल कुटना भोजन लै तरिया ना कुछ भरोना दो तू जाए एक निरंजन पूजा जाता देखो आप दयाल को ना प्रभ मिले सा राम करी महला पांचवा तन ते छुटकी अपनी धारी प्रभु की आ गल की प्यारी जो किस कर सो मन मेरा मीठा ताए चरजन नो डीठा हम जानी रे मेरी गई बुलाए बुझ गई त्रिश्नवारी ममता गुरपुरा लियो समझाए राव कर कृपा राखो गुर शरणा गुरु पकराए हर के चरणा बीस बिस जामन डराने गुर पर प्रमे कही जाने जो जो की नाम तिसके दास प्रभु मेरे को सकल निवास ना को दूत नहीं बहराई गल मिल चाले एक भाई जाको गुर हर दिए सुखा ताको बन लागे दुखा आपे आप सर प्रतपाल अनग्रहतो रंग गोपाल राम करी महला पांचवा मुक्त पड़ता टीका सहत हृदय राम ने पूर्ण रहत देज करे कल उपदड़ावे प्रंग आवना कुमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित राव अगर आखो साल ग्राम मन की नूं दै दिस विश्राम तिल चराए तिल चरावे पाई पाए लोग चराए अंत कमाए खटकर मारा संतोती पाठ गृह पड़ा नित पोथी माला फिर मंगा विभूत इविद को न तरह उमीत सो पंडित गुरु शत कुमाए त्रैगुण की हो सुत्री माए चतुर वेद पूर्ण हरनाए नानक तिसकी शरणी पर राम कली महला पांचवा कोट बिघन नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक भावता के पानी आर जाको मैं अपई करता रहूं जिस आई हो भगवान अनक जितनो आक सरंजाम रहा करता राखा कीता कौन कीरी जीतो सगला भवन बेअंत मैं माता की केत कुवरण भरबल जाइए ताके चरण

राव तीत नाय नौ त्रिसमैल करम धर्म सब होमा बैल लोक बिचारा गात नहीं कोए ना मुणे चल सरोए लोक बिचारा गात नहीं होए ना मुणे चल सरोए मिन हर नाम ना टूट सपटल सो दे शास्त्र सर सगल सो नाम जप साहब जगाए सगल फला से सुख समाए राखण हरे राखो आप सगल सुखा प्रभु तुरै साथ राखण हरे राखो आप सगल सुखा प्रभु तुरै हाथ जितला मैं तुलागे स्वामी नानक साहब अंतर जामी राम कली महला पांचवा जो किरा सोई सुख जाना मन समझा संपत्ति ना ढूलन ते चूका डरा सत मारे सत समाया।

खोजो संतु हर ब्रह्म ज्ञानी विष्णु विष्णु पै विष्णु माता परम गो तुम हर सिमर प्राणी राहु कर में देखो सकल विचार ना बिना कुछ कर तार सकल पावन चालन संग पाव जल त्रिय प्रभु का रंग दी तो ना उतरा मैल ओम व्यापा दुबदा बैल हर रो कुछ योजन गाय ताका रोग सकल मिट जाए कर कृपा परम दयाल मंत्र कमन विश्व कुमार तेरे दास की मातूर नानकी प्रभु लोच नानकी प्रभु श्रद्धा पूर राम कली मल्ला पंजमा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाई कोई तू सुनात पूर्ण पार ब्रह्म सोते आए जिस पूर्ण कर्म तू सम्राट पूर्ण पार ब्रह्म सोते आए पूरा जिस कर्म धरण तारण प्रभु तेरो नाम एक आचरण गई मन मेरा है तुझ में दूजा नाई ठाऊ राव जब जब जीवा तेरा नाम आगे दरगाह पाऊ ठाऊ दुख देरा मंते जाए दुर्पिन सहरा चहर नाए चरण कम से लागी प्रीत गुर पूरे की निर्मल रीत पौ पागा निरपौ मन बसाए मृत नाम रसना नित जप है कोट जन्म के काटे भाए पाया लाभ सचा धन लाहे टूटना वा कोट भंडार नानक पास हो द्वार राम कली मल्ला पंजमा

दास की रेण पाए जे कोय नाम किसकी परमगत हुए राम करी मल्ला पांचवा दर्शन को जाइय कुर्बान चरण कमल हृदय तृत्यान सतूर संत की मसकलाए जन जन की तरफ मल जाए जिस पेट मिटाए भगवान परम सुमृतियां वह कर कृपा पूर्ण भगवान रहो गुर की कीर्त प्यार नाऊ गुर की भाषा गुण गाओ गुर की सुरत निरकर जान गुर का जब सत करमान गुर बचनी संसार सुख दुख कदिन व्याप तृष्णा भूख मन संतोष शब्द गुर राजे जब को बिंद पढ़ते सब काजे गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर दा दयाल भगवान गुर चरणी जा का मन लागा नानक दास तेस पूर्ण भागा राम करी मन लव पांचों किस प्रभाषा विच रहै किस प्रभाषा विच रहै भवन मूड मूड मुखतरा संगी कवन राम संगीत गत नहीं जान पंच पटवारे समीत कर मन

काल चक्र वेला हर चरण कमल शरणाए मना राम नाम जप संग साई गुरु पावन साहित न राव ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध म सदी चूरे करै बकार जी रे कहताई गावर तो संग्रंत सुआ जाई धरत तो अनक्षर जाना कौडी कौडी को खाक सिर जाना जिंदिया तिसन चेता मूल मिथ्या लोग न उतरा सूल पार मुझ पहे दयाल ही मनवा सादरवाल हस कमल लड़दी नो लाए रंग सच सा समाए राम कली मल्ला पंजवां राजा राम की शरण आए निरपो भय गोविंद गुण गावत सा संग दुख जाय रहौ जाका राम समन माई सोजन दुत्र बेक नाई सोले का सवारे अपने हर नाम रसन नित जपने जिसका मत हाथ गुर तरह सुधा संदेशा गाय करा जन्म मन की चूकी कान पूरे गुरे ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर भेट दे।

मैं गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे, कर कृपा अपने कर आवे उनब बरसे नीचर तहारा, उत्तम शब्द स्वारन हारा, इस एक एक का जाने पियो आपे करता आपे देव, उगवे सूर असुर संघारे ऊंचो देख शब्द विचारे, ऊपर आद अंत तेह लोए आपे कत करे कथे सुने सोए, ओह विदाता मंतन दे ओह विदाता मन मुख सोए, प्रभ जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पत होए, राजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ तार, रात दिनांत रहे रंग राता तीन पवन जुग चारे जाता, जिन जाता सोते सीजेहा अत निर्मायल सीज सदेहा, रहसी राम हृदय एक पाए अंतर शब्द साच लिवलाए, रोस न कीजे अमृत पीजे रह नहीं संसारे, राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे, रहन कहन ते रहे न कोई किस पह करो बेनती, एक शब्द राम नाम निरोधर गुरुदेव पद्मती, लाज मरंती मर गई कुंगट खोल चली, सास दीवानी बाबरी सिर ते संकट ली, प्रेम बुलाई रली सियो मन में शब्द आनंद, लालती लाली पई गुरमुख पई निचेंद, लाहा नाम रतन जपसा।

होए मजूर गया ठगाए ठग, राहा ना पूंजी बेसाह, नानक सच्ची पात सच्चा पातशाह, आए बिगूता जग जम पंथ, आई न मेटन को समरथ, आथ सैल नीच कर होए, आथ देख निवे जिस दोए, आथ होए ता मुक्त सियाना, भक्त भी हुना जग बौराना, सब मैं बरते एको सोए, जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए, जुग जुग थाप सदा निर्वैर, जन्म मरण नहीं तंदा तहर, जो दिस है सो अपे आप उपाय आपे कट थाप, आप अगोचर तंदै लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम बिहुना मुक्त केव होई, बिन नावे बेरोध शरीर, क्यों ना मिले काटे मन पीर, बाट बटाऊ आवे जाए, क्या ले आया क्या पल्ले पाए, बिन नावे तोटा सब थाए, लाहा मिले जांदे बुझाए, बणज बापार बणजे बापारी, बिन नावे कैसी पत सारी, गुण बिचारे ज्ञानी सोए, गुण में ज्ञान प्राप्त होए, गुणदाता बिल्ला संसार, साची करनी गुर विचार, अगम अगोचर

जो कंचन सोहागा टहले कस कस वट्टी सहे सोताओ नदर सराफ बनी सचड़ाओ जगत पशु हंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिन की ती तिन कीमत पाई होर क्या कहिए किछ कह न जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए हाथ पियंत मुए नहीं जानिया खिन मह मुए जा शब्द पछानिया असर चीत मरन मन मानिया गुर के पाते ना पछानिया गगन गंभीर गगन अंतर बास गुण गावे सुख सहज निवास गया न आवे आए न जाए गुर प्रसाद रहे लेवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी असर चीत समाद सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमुक्त गुरमत सार हो नाम बिहुनी कर दर फिर थाकी बहु तेरे जात असंग अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत तिया केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुर ते मुक्त न हुआ केती नार वर एक समाल गुरमुख मरन जीवन प्रभ नाल दह दिस ढूंढ कर है मैं पाया मेल पया सतगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तुलावे तोले गुरमुख आवे जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद भेद विचार गुरमुख मजन चज अचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाए चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल उतारे मी चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिसे सब कोए चेते एक तही सुख होए चित बसे राचे हन्नाए मुक्त पया पत स्यों कर जाए छीजे देह खुले एक गंड छेया नित देखो जग हंड तूप शाव जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया शूशी जगत पुलाना लिखिया केत तुरे परवाना छीजे जोबन जरुआ सिरकाल काया छीजे पये सिबाल जापे आप प्रभु तहलोए जुग जुग दाता अवन ना कोए जो पावे त्यो राखे राख जस जाचो दे बे पत साख जागत जागर हाँ तुद पावा जा तू मेले ता तुझे समावा जय जयकार जपो जगदीस गुरमत मिलिए बीस अकीस चख बोलन क्या जग स्यों बाद चूर मरे देखे परमाद जन्म हुए नहीं जीवन आसा आए चले पे आस निराशा चोर चोर चख माटी रल जाए काल न चांपे हर गुण गाए पाई नव निद हर के नाए आपे देवे सहज सुवाए ज्ञानो बोले आपे बूझे आपे समझे आपे सूझे गुर का कहया अंक समावे निर्मल सूचे साचो पावे गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साच अखोट गुर कहया साकार कमावो गुर की करनी काहे तावो नानक गुरमत साच समावो टूटे निहो के बोले सही टूटे वहां दहू दिस गही टूट प्रीत गई बोर बोल दुर्मत पर हर शाडी ढोल टूटे गंड पड़े विचार गु शब्दी कर कार्ज सार लाहा साच न आवे तोटा त्रिपवन ठाकुर प्रीत मोटा ठाको मनुआ राखो ठाए ठहक मुई अवगुण पछताए ठाकुर एक सवाई नार बहुते वेश करे कुड़ियार पर कर जाती ठाकर हाई महल बुलाई ठाक न पाई शद सवारी साच प्यारी साई सुहागण ठाकुर धारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर शिंगार डहापन तन सुन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरप मुई करे आपने डीठी कंत सुजान डर राखिया गुरे आपने निरपो ना बखान डूगर बास तिखा कणी जब देखा नहीं दूर तिखा निवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखे सब कोई जय पावे तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोए टंडोलत ढूंढत हों फिरी टह टह पवन करार पारे टहते टह पे
होले निकसे पार अमर अजाची हर मिले तिनके हो बल जाओ तिनकी धूड़ अकुली है संगत मेल मिलाओ मन दिया गुरे आपने पाया निर्मल नाओ जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलिहारे जाओ जो उसारे सो टहसी तिस बिन अवर न कोए गुर प्रसादी तिस समला ता तन दुख न होए ना को मेरा किस गणी ना को हुआ न होग आवन जान भी गुची है दुबदा ब्या पैरोग ना भी हुने आदमी कलर कंध गिरंत बिन नावे क्यों छुटी है जाए रसातल अंत गणत गनावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान न होए टूटी तंत्र वाब की बाजे नहीं वियोग बिछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगे मिल एक से तिनको फास न रंच उड़े ता बेगुल बेगुले तहके चोग कणी पंख टूटे फाही पड़ी अवगुण पीड़ बनी बिन साचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मनी आप छड़ाए छूटी है बड़ा आपतनी गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ बढ़ाइया जै पावे ते दे थर थर कंपे जीड़ा थान भी हुना होए थान मान सच एक है काज ना फीटे कोए थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा विचार सुर नर नाथे नाथ तू निधारा आधार सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तै एक तू अंत न पारा वार थान थनंतर रव रहया गुशब्दी विचार अणमंगया दान देवसी बड़ा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखन हार दया करे प्रभ मेल लह खिन में टहे उसार दाना तू भी ना तुही दाना के सिर दान दालद पंजन दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान तन गया बह चूरी है तन में चीत गवार तन बिरली सच संचया निर्मल नाम प्यार तन गया ता जान दे जे राचे रंग एक मन दी जे सिर सौपिए भी करते की टेक तंदा तावत रह गए मन में शब्द आनंद दुजन ते साजन पे पेटे गुर गोविंद बन बन फिरती टूंडती बस्तर ही करबार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार नाना करतना छूटी है बिन गुण जम पुर जाहे ना तिस एहो ना ओह है अवगुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान बिन नावे निरपो कहा क्या जाना अभिमान था कर ही केव अपड़ा हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले किस पह करी पुकार नानक प्रयोजे करी मेले मेलनहार जिन बिछोड़ी सो मेल सी गुर कै हेत अपार पाप बुरा पापी को प्यारा पाप लदे पापे पासारा पर हर पाप पछाने आप ना तिस सोग विजोग संताप नरक पड़न तो क्यों रहे क्यों बंचे जमकाल क्यों आवण जा

है, फिर फाही फासे कहुआ, फिर पछताना अब क्या हुआ, फाथा चोग चुगे नहीं बूझे, सतगुर मिले ता आखी सूजे, जो मछली फाथी जम जाल, बिन गुरदाते मुक्त ना पहाल, फिर आवे फिर जाए, एक रंग रचे रहे लिवलाए, एव छूटे फिर फास ना पाए, बीरा बीरा कर रही बीर पे बहराए, बीर चले करे अपने बहन बिरह जल जाए, बाबुल कह कर बेटड़ी बाली बाले नेह, जे लोड़े बरकामनी सतगुर से वहते है, बेलो ज्ञानी बूझनो सतगुर साच मिले है, ठाकुर हाथ बढ़ाइया जय पावे तह दे, बाणी बेलो विचार सी जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की निज कर वासा हो, पण पण कड़िए कड़ कड़ बजे, टाहे उसारे उसरे टाहे, सर पर सोखे पी पर पोखे, समरथ बेपरवाह है, परम पुलाने पहे दीवाने, बिन पाग्या क्या पाईए, गुरमुख ज्ञान डोरी पव पकड़ी, जिन खिंचे तिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बहुत न पछोताइए, पब्बे पाले गुरमुख बूझे, ता निज कर वासा पाईए, पब्बे पुआजल मार्ग बिखड़ा, आस निराशा तरिए, गुर प्रसादी आपो चीने, जीवत्या इव मरिए, माया माया कर मुए, माया किसे ना साथ, हांस चले उठ डुमनो, माया पूली आथ, मन झूठा जम जो हया, अवगुण चल है नाल, मन महन मन उल्टो मरे, जे गुण हो वह नाल, मेरी कर मुए, बिना वे दुख पहाल, गढ़ मंदर महला कहा, जो बाजी दीवान, नानक सचे नाम बिन, झूठा आवन जान, आपे चतर स्वरूप है, आपे जान सुजान, जो आवे से जाहे उपन, आए गए पछताहे, लख चरासी मेदनी, कटे ना बदे उताहे, से जन उबरे जिन हर पाया, तंदा मुआ बिगुती माया, जो दिसे सो चालसी, किसको मीत करे ओ, जियो संपो आपना, तन मन आगे देओ, असर करता तू तनी, तिसी की मैं ओट, गुण की मारी हो मुई, शब्द रती मन चोट, राणा राव ना कोर है, रंग ना तुंग फकीर, बारी आपो आपनी, कोई ना बंदे तीर, राह बुरा पिहावला, सर डूगर असगाह, मैं तन अवगुण चुरमुई, बिन गुण क्यों कर जाह, गुणिया गुण ले प्रमिले, क्यों तिन मिलो प्यार, तिन ही जैसी थी रहा, जप जप हृदय मुरार, अवगुणी भरपूर है, गुण पी वस है नाल, बिन सतगुर गुण ना जापनी, जिचर शब्द ना करे विचार, लसकरियां कर संभले, आहे बजो लिखाए, कार कमावे सिर तनी, लाहा पल्ले पाए, लाभ लो बुरे आईया, छोड़े मनो बिसार, गढ़ दोही पातशाह की, कदे न आवे हार, चाकर कहिए कसम का, सोहे उत्तर दे, बजो गवाए अपना, तख्त न वैसे से, प्रीतम हाथ बड़े आईया, जय पावे तें दे, आप करे किसे आखिए, अब न कोई करे, बीजो सूजे को नहीं, बहे दुलीचा पाए, नर के निवारण नर है नर, साचो साचे नाए, बाण त्रिन टूंडत फिर रही, मन में करो विचार, लाल रतन बहुमान की, सतगुर हाथ पंडार, उत्तम होवा प्रभ मिले, एक मन एक है पाए, नानक प्रीतम रस मिले, लाहा ले पर थाए, रचना राच जिन रची, जिन सरिया आकार, गुरमुख बेअंत त्याई है, अंत न पारावार, राड़े रूड़ा हर जियो सोए, तिस बिन राजा अवन न कोए, राड़े गारुड़ तुम सुनो, हर बसे मन माहे, गुर प्रसादी हर पाई है, मत को परम पुलाहे, सो साहो साचा जिस हर तन रास, गुरमुख पूरा तिस सावास, रूड़ी बाणी हर पाया, गुर शब्दी विचार, आप गया दुख कटिया, हर बर पाया नार, सोए ना रूपा संची है, तन काचा बिखशार,
साहो सदाए सांच तहन दुबदा होए खुआर सचियारी सच संचया साचो नाम अमोल हर निर्मायल उजलो पत साची सच बोल साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकुर मन वसै हों बलेहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूजै पुरख सुजान खिमा भी होने खप गए खूहन लख असंख गणत न आवे क्यों गणी खप खप मुए बेसंख खसम पछाणे आपना खुले बंद न पाए शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे बसे शरीर मन तन मुख जापे सदा गुण अंतर मन तीर होमे खपे खपाए सी बीजो बथ विकार जां तू पाए बिच पायन करता अलग अपार सिष्टे प्यो न जाने कोए सिष्टा करे सो नहचो होए संपै को ईसर त्याये संपै पूर्व लिखे की पाये संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चाले होर बिन साचे नहीं दरगा मान हर रस पीवे छुटे निदान हिरत हिरत हे सखी होए रही हैरान हो हों करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन कणे करथा की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुना गल हार नानक गुरु ख पाइए हस्यो प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यो रखो प्यार हर जपिए हर त्याइए हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पगतार करते हाथ बड़ियाइया बूझो गुर विचार लिखिया फिर न सकी है जो पावी त्यों सार नदर तरी सुख पाया नानक शब्द विचार मन कपूले पच मुए उबरे गुर विचार जे पुरख नदर ना आवई तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुरे अपने जिन हिरदय दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखिए विद्या विचरे सहज सुभाए विद्या सोदय तत्ल है राम नाम लिबलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिखटे बिख खाए मूर्ख शब्द न चीनई सूज बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे नाम समालो नाम संग्रो लाहा जग महले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पंडे पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सत गुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे हर हरास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाइए सहज पाए जस लेओ क्या पविए सच सूचा होए साच शब्द मुक्त ना कोए रहाओ कवन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा कौन मारो कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हाँ संत जना बल जा कह बैसो कह रही है बाले कह आबो कह जाहो नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो कट कट बैस निरंतर रहिए चाले सतगुर पाए सहजे आए हुक्म सिदाए नानक सदा रजाए आसन बैसन थे नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे सच्चे सच समाए दुनिया सागर दुतर कहिए क्यों कर पाइए पारो चरपट बोले आदू नानक देहो सचा विचारु आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजे साच कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजे जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई न साने सुरत शब्द पव सागर तरिए नानक नाम बखाने रहे एकांत एको मन वसिया आसा माहे निरासो अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच विचारो रोस ना कीजे उत्तर दीजे क्यों पाइए
ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰ ਇਹ ਮਨ ਚਲ ਤੋ ਸੱਚ ਕਰ ਵੈਸੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਪਿਆਰੋ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲੇ ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਉਦਿਆਨੇ ਕੰਧ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਏ ਆਦੂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਏ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਈ ਗੋਰਖ ਭੂਤ ਲਾਹੌਰੀ ਪਾ ਬੋਲੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਬਿਦ ਸਾਈ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਕਰ ਚਿਤ ਨਾ ਡੁਲਾਈ ਬਿਨਾਵੇ ਮਨ ਟੇਕ ਨਾ ਟਿਕੇ ਨਾਨਕ ਭੂਖ ਨਾ ਜਾਈ ਹਾਟ ਪਟਣ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਬਪਾਰ ਖੰਡਿਤ ਨਿੰਦਰਾ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਕਰੋ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਮੁੰਦਰਾ ਚੋਲੀ ਕਿੰਥਾ ਬਾਹਰੇ ਅੰਤਰ ਏਕ ਸਰੇਵੋ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਥਾ ਇਨ ਵਿਧ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਪੁਰਖਾ ਬਹੁੜ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਈਐ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਜੋਗ ਜਗਤ ਇਬ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰ ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਦਰਾ ਹੋਮੇ ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਸਮਝ ਪਰੀ ਖਿੰਥਾ ਚੋਲੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਏਕ ਹਰੀ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਪਰਖੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ ਉਂਦੋ ਖੱਪਰ ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪੀ ਕਾਇਆ ਕੜਾਸਨ ਮਨ ਜਾ ਗੋਟੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੰਜਮ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਕਵੰਸ ਗੁਪਤਾ ਕਵੰਸ ਮੁਕਤਾ ਕਵੰਸ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜੁਗਤਾ ਕਵੰਸ ਆਵੇ ਕਵੰਸ ਜਾਏ ਕਵੰਸ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਕਟ ਕਟ ਗੁਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਜੁਗਤਾ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਾਦਾ ਸਰ ਪਰਖਾਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਖੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਾਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਦੁਰਮਤ ਬਾਦਾ ਸਰ ਪਰਖਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਸਮਾਏ ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦ ਉਡਹਿ ਨਾ ਹੰਸਾ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਧ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਕਰ ਜਾਣੇ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ ਕਿਸ ਕੰਨ ਗ੍ਰਹ ਤਜਿਉ ਉਦਾਸੀ ਕਿਸ ਕੰਨ ਇਹ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸ ਬਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਬਣ ਜਾ ਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਗਾਬੋ ਪਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਪਏ ਦੁਦਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਚ ਬਖਰ ਕੇ ਹਮ ਬਣ ਜਾ ਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰੇ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮ ਬਟਾਇਆ ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੁਝ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ ਕਿਤ ਬਿਦ ਆਸਾ ਮਨ ਸਾ ਖਾਈ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ ਬਿੰਦੰਤਾ ਕਿਉ ਖਾਈਏ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ ਅਨਹਤ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ ਤੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਆਦਿ ਕੋ ਕਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁਨ ਕਹਾ ਕਰਵਾਸੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਵਨ ਕਥੀਅਲੇ ਕਟ ਕਟ ਕਵਨ ਨਿਵਾਸੋ ਕਾਲ ਕਠਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਜਲਾਈ ਅਲੇ ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਉ ਕਰ ਜਾਈਐ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਆਸਨ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਛੇ ਦੇ ਬਹਿਰਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਮੇ ਖਪ ਬਿਖ ਮਾਰੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਵੈ ਬਾਸੋ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜਾਵੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਜੋ ਅਰਥਾਵੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ ਕਿਉਂ ਤੱਤੇ ਅਵਗਤੇ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੋ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੋ ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੇ ਗਤ ਮਿਤ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਈ ਆਦਿ ਕੋ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਕਲਪਤ ਮੁੰਦਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਅਲੇ ਕਟ ਕਟ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅਵਗਤ ਸਮਾਈਐ ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਹਿਜਲ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵੈ ਸਿੱਖ ਸੋ ਖੋਜਲ ਹੈ ਹੁਕਮ ਬਿਸਮਾਦ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਜੀ ਜੁਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਆਪ ਮੇਟ ਨਿਰਾਲਮ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ ਅਵਿਗਤੋਂ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥਿਆ ਸਤਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਐ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈ ਲਿਆ ਏਕ ਏਕੋ ਸੱਚ ਏਕਾ ਜਾਣੇ ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਥਿਆ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਤਾਂ
सब की सूझे अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले बढाई आप पछाने सर्ब जिया साचो उपजे साच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठव न पावे दूजे आवा गौण पिया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बख्श लिया एक आवेदन दूजे व्यापी नाम नसायन विसरिया सो बुझे जिस आप बुझाए गुर के शब्द सो मुक्त पिया नानक तारे तार नहारा हमे दूजा पर हरिया मनुख पूले जम की कान पर कर जोहे हाने आन मनु परम पवे बेबान बे मार्ग मूसे मंत्र मसान शब्द न चीने लवे कुबान नानक साच ते सुख जान गुरमुख साचे का पह पावे गुरमुख बाणी अकड़ कड़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख साच समावे गुरमुख परचे वेद विचारी गुरमुख परचे तरिये तारी गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचे अंतर वेद जानी गुरमुख पाये अलाख पर नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथे विचार गुरमुख निब है सा परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाये शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक होमे जाल समाई गुरमुख तरती साचे साजी जिसमें ओ पत खपत सो बाजी गुर के शादर पै रंग लाए साच रतो पत स्यो कर जाए साच शाद बिन पत नहीं पावे नानक बिन नावे को साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरिये सच सुधि गुरमुख सर अपसर विद जाने गुरमुख पर विरत नर विरत पछाने गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निसारे नामे राते होमे जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते जोग जुगत विचार नाम रते पावे मोख द्वार नाम रते त्रिपवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए नाम रते सदा स्तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार भिन्ना वे बोले सब विकार नानक नाम रते तिन को जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाए जोग जुगत सच रहे समाए बारे में जोगी परमाए सन्यासी शेचार गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार बिन शादे सब दूजे लागे देखो रिदे विचार नानक बड़े से बड़ पागी जिनी सच रख्या और तहार गुरमुख रतन लहै लिव लाए गुरमुख परखे रतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पते आए गुरमुख अलख लकाए तिस पावे नानक गुरमुख चोट न खावे गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागे सहज त्यान गुरमुख पावे दरगा मान गुरमुख पौ पंजन प्रदान गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख शास्त्र सिमत बेद गुरमुख पावे कट कट भेद गुरमुख बैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भर में आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ आत डुलाए बिन गुर तित नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मर बाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तारे मुक्त महासुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे न आवे हार तन हटड़ी ए मन बन जारा नानक सहजे सच बपार गुरमुख बांधियो सेत बिदाते लंका लूटी दैत संतापे रामचंद मारियो अहरावन भेद बपीखण गुरमुख परचायन गुरमुख साहिर पाहण तारे गुरमुख कोट तेतीस उदारे गुरमुख चूके आवन जान गुरमुख दरगाह मान गुरमुख खोटे खरे पछाण गुरमुख लागे सहज त्यान गुरमुख दरगा सिद्ध समाए नानक गुरमुख बंद ना पाए गुरमुख नाम निरंजन पाए गुरमुख होमे शब्द जलाए गुरमुख साचे के गुण गाए गुरमुख साचे रहे समाए गुरमुख साच नाम पत उत्तम होए नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला कवन कथा ले रोह निराले बोले नानक सुन
सुनो तुम बाले, इस कथा का देह विचार, भव जल शब्द लंगावन हा, पवन आरंभ सत गुरु मत वेला, शब्द गुरु सोरत तुन चेला, अकाथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला, एक शब्द जित कथा बिचारी, गुरमुख हा में अगन निवारी, मैन के दंत क्यों खाइए सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हिवे का कर मंदर अगन पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किस को जान समावे, कवन ध्यान मन मने समावे, हां हां मैं बिचों खोवे, दूजा मिटे एको होवे, जग करड़ा मन मुगा वार, शब्द कमाइए खाइए सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सत गुर के पाणे, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द बिचारे, शब्द बसे सच अंतर हीया, तन मन सीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कशाया, कवन मुख सूर्य तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल संगारे, बोले ना बाणी नानक विचारे, शाद पाकत सस जोत अपारा, सस कर सूर बसे मिटे अंधियारा, सुख दुख सम कर नाम अदारा, आपे पार उतारन हारा, जुर परचे मन साच समाए, परमत नानक काल ना खाए, नाम तत सब ही सिर जापे, बिन नावे दुकाल संतापे, तत्तो तत मिले मन माने, दूजा जाही कस कर आने, बोले पवना गगन गरजे, नानक नहे चल मिल सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, ते पवन सुन मसुनंग, चौथे सुने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कटकर सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विदाता, सुनो सुन कहे सब कोई, अनहत सुन कहां ते होई, अनहत सुन रते से कैसे, जिसते उपजे तिसी जैसे, उहे जन्म न मरे न आवे जाहे, नानक गुरमुख मन समझाहे, नौ सर सुपहर दस में पूरे, तह अनहद सुन बजावे तूरे, साचे राचे देख जूरे, कट कट साच रहा पर पूरे, गुप्ती बाणी प्रगट होए, नानक परख ले सच सोए, सहज पाए मिलिए सुख होवे, गुरमुख जागे नींद ना सोवे, सुन शब्द अपरंपर तारे, कहते मुक्त शब्द निस्तारे, गुर की दिख्या से सच राते, नानक आप गुवाए मिल नहीं प्राते, कुबुद चुबावे सो के तठाए, क्यों तात न बूझे चोटा खाए, जम दरबादे कोई न राखे, बिन शादे नाही पत साखे, क्यों कर बूझे पावे पार, नानक गुमन मुख ना बूझे गवार, कुबुद मिटे गुर शब्द विचार, सतगुर पेटे मुख द्वार, तात न चीने मन मुख जल जाए, दुर्मत बिछड़ चोटा खाए, माने हुक्म से गुण ज्ञान, नानक दरगाह पावे मान, साच बखर तन पल्ले होए, आप तरे तारे पीसोए, सहजर ताक बूझे पतोए, ताकि कीमत करे ना कोए, जह देखा तह रहा समाए, नानक पार परे सच पाए, सो शब्द का कहां बास कथी अले, जित तरिये पवजल संसारो, त्रै सात अंगुल बाई कहिए, तिस कहो कवन अधारो, बोले खेले असिर होवे, क्यों कर अलाख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच लिवलागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे बिना, पूरे भाग समाए, सो शब्द को निरंतर बास लखम, जय देखा तै सोई, पवन का बासा सुन निवासा, अकाल कला तर सोई, नदर करे शब्द कट में बसे, बिचो परम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नाम मन बसाए, शब्द गुरु पव सागर तरिये, इत उत एको जाने, चहन बन नहीं शाया माया, नानक शब्द पछाने, त्रै सत अंगुल बाई औदु, सुन सच आहारो, गुरमुख बोले तत विरोले, चीने अलख अपारो, त्रै गुण मेटे शब्द बसाए, ता मन चुके हंकारो, अंतर बाहर एको जाने, ता हर नाम लगे प्यारो, सुख मना इड़ा पिंगला, बूझे जा आपे अलख लखाए, नानक त्यो ते ऊपर साचा, सतगुरु शब्द समाए, मन का जियो पवन कथियले, पवन कहाँ रस खाई, ज्ञान की मुद्रा कवन औदू, सिद्ध की कवन कमाई, बिन शब्द रस न आवे औदू,
मधु हमें प्यास न जाई, शब्द ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई, कवन बुद्ध जित अस्तर कही रही है, कित भोजन तृप्तास है, नानक दुख सुख सम कर जापे, सतगुर ते काल ना ग्रासे, रंग न राता रस नी माता, बिन गुर शब्द जल बल ताता, बिंद न राख्या शब्द न पाख्या, पवन न साध्या सच न अराध्या, अकाथक ताले सम कर रहे, तो नानक आत्म राम कुल है, गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया साचे माता, गुर बिचारी अग्निवारी, अपय पियो आत्म सुख तारी, सच अराध्या गुरमुखता तारी, नानक बूझे को बिचारी, एह मन मैगल कहाँ बसियले, कहाँ बसे इहो पवना, कहाँ बसे सो शब्द आदू, ताको चूके मन का पवना, नदर करेता सदगुर मेले, ता निज कर बासा इहो मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत बर्ज रहाए, क्यों मूल पछाने आत्म जाने, क्यों ससगर सूर समावे, गुरमुख होमे बिचों खोवे, तो नानक सहज समावे, इह मन ने चल हृदय बसियले, गुरमुख मूल पछान रहे, नाव पवन कर आसन वैसे, गुरमुख खोज तातल है, सो शब्द निरंतर निज कर आस है, त्रिपवन ज्योत सो शब्द है, खावे दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तासर है, अनहद बाणी गुरमुख जानी, बेलो को अर्थावे, नानक आखे सच सुपाखे, सच रपे रंग कभू ना जावे, जाए हुर्दा देह न होती, तो मन कैठे रहता, नाव कमल अस्थंभ न हो तो, ता पवन कवन कर सहता, रूप न हो तो रेख न काई, ता शब्द कहाँ लिवलाई, रक्त बिंद की मड़ी न होती, मित की मत नहीं पाई, बन पेख असरूप न जा

तो मन सुन रहे बैरागी, नाव कमल अस्थम्भ न हो तो निज कर बस तो पवन अरागी, रूप न रेख्या जात न होती तो अकुलीन रहत हो, शब्द सुसार गौण गगन जब तब है न हो तो ते पवन ज्योत आपे निरंकार, बन पेक असरूप सो एको एको शब्द बिडानी, साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी, कित कित बिद जग उपजे पुरखा, कित कित दुख बिन सजाई, हमें बिच जग उपजे पुरखा ना बिसरे दुख पाई, गुरु को होवे सो ज्ञान तत विचारे, हमें शब्द जलाए तन मन निर्मल निर्बल बाणी, साचे रहे समाए नामे नाम रहे बैरागी, साच रख्या और तहारे, नानक बिन आवे जो कदे ना होवे, देखो हृदय बिचारे, गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए, गुरमुख साच बाणी प्रगट होए, गुरमुख मन पीजे बिरला बूजे कोए, गुरमुख निज कर बासा होए, गुरमुख जोगी जुगत पछाणे, गुरमुख नानक एको जाने, बिन सतगुरु सेवे जोग न होई, बिन सतगुरु पेटे मुक्त न होई, बिन सतगुरु पेटे नाम पाया न जाए, बिन सतगुरु पेटे महा दुख पाए, बिन सतगुरु पेटे महा गर्भ गुबार, नानक बिन गुर मुआ जन्म हार, गुरमुख मन जीता होमे मार, गुरमुख साच रख्या उर तार, गुरमुख जग जीता जम काल मार विदार, गुरमुख दरगा ना आवे हार, गुरमुख मेल मिलाए सो जाने, नानक गुरमुख शब्द पछाने, शब्दे का निवेड़ा सुन तू औदू, बिन नावे जोग न होई, नामे राते अंदिन माते, नामे ते सुख होई, नामे ही ते सब प्रगट होवे, नामे सो जी पाई, बिन आवे पे करे बहुत तेरे, सच्चे आप खवाई, सतगुर ते नाम पाइए औदू, जोग जगता होई, कर विचार मन देखो नानक, बिन

जाने। साधक सिद्ध गुरु बहुत चेले खोजत फिरे फुरमाने, मांगे ना पाए एह भिखिया तेरे दर्शन को कुर्बाने। अविनाशी प्रभ खेल रचाया गुरमुख सोजी होई, नानक सब जुग आपे बरतै दूजा अवर ना कोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली की बार महला तीजा, जोदय बीरे पूर्वाणी की तुनी श्लोक महला तीजा। सतगुरु सहजे दा खेत है जिसनों लाए पाओ, नाओ बीजे ना उगवे ना में रह समाए। होमे एहो बीज है सहसा गया बिलाए, ना किछ बीजे ना उगवे जो बख्शे सो खाए। अंबे सेती अंबर लिया बह न निकसिया जाए, नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए। लोक के वेखे बपड़ा जिसनो सो जी नाहे, जिस वेखाले सो वेखे जिस बसिया मन माहे। महला तीजा मनुख दुखा खेत है दुख बीजे दुख खाए, दुख जजमे दुख मरे होमे करत बिहाए। आवण जान सुजई अंधा अंध कमाए, जो देवे तिसे ना जानी दिते को लपटाए। नानक पूर्व लिखिया कमावना अवना करना जाए। महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनु आपे मेले सोए, सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए। अज्ञान का भ्रम कटिए ज्ञान प्राप्त होए, नानक एको नदरी आया जह देखा तै सोए पौड़ी। सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, साकिच आपे आप है गुरु शब्द सुनाई। आपे कुदत साजियन कर महल सराई, चंद सूरज दोए चानने पूरी बंत बनाई। आपे वेखे आप सुने आप गुरु शब्द त्याई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई रहाओ। सलोक कबीर मेहदी करके कालिया आप पिसाए पिसाए, तह सह बात न पुछिया कबू न लाई पाए। महला तीजा नानक मेहदी करके रखिया सो सोह नदर करे, आपे पीसे आपे कसे आपे ही लाए ले। यो परम प्याला खसम का जय पावे तें दे पौड़ी, बेकी शिष्ट उपायन सब हुक्म आवे जाए। समाही आपे वेख बिगसा दूजा को नाही, जो पावे त्यो रख तू गुरु शब्द बुझाई। सब ना तेरा जोर है जो पावे तिमे चलाही, तो जेवड़ मैं नाहे को किस आख सुनाई। श्लोक महला तीजा परम पुलाई सब जग फिरी फावी होई पाल, सो सो शांत ना देवी क्या चले तिस नाल। गुर प्रसादी हत्याई है अंतर रखिए उरत हाल।

गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना, हर हर नाम देड़, मनुख आप खुआईन, माया मोह नित कर, सबना साहेब एक है, पूरे भाग पाया जाई, सलोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जत फिरे, ना सत मूंड मुडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिरे, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तछावे दुख सहे, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई कहो चरे, जिस हाथ सिद देवे जे सोई, जिसनु दे तिस आई मिले, नानक ता को मिले बड़ाई, जिस कट पीत शब्द रवे, सब कट मेरे हो सब ना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला बाटड़ी, तिसे कुलावे कौन, जिसे पुलाई पंद सिर, तिसे दिखावे कौन, महला पहला, सो गिरही जो निग्रहो करे, जब तब संज भिख्या करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम तंत मैं रेख न रूप, महला पहला, सो औदूती जो तू पै आप, भिख्या भोजन करे संताव, अहट पटन मैं भिख्या करे, सो औदूती सिब पुर चढ़े, बोले गुरख सत स्वरूप, परम तंत मैं रेख न रूप, महला पहला, सो दासी जे पाले उदास, अर्ध उर्द करे निरंजन वास, चंद सूज की पाए गांड, तिस उदासी का पढ़े न कंध, बोले गोपी चंद सत स्वरूप, परम तंत में रेख न रूप, महला पहला, सो पाखंडी जे काया पखाले, काया की अगन ब्रह्म पर जाले, सुपने बिंद न दई चरना, जिस तिस पाखंडी जरा न मरना।

0: भूत ना संसारी ना अदूत निरंकार जो रह समाये काहे पिखिया मंगन जाए पौड़ी हर मंदर सोई आखी है जिथो हर जाता मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता बार मूल ना खोजिए कर माहे विदाता मन मुख हर मंदर की सा न जाननी तिनी जान जिनी जन्म गवाता सब मैं एक बरतदा गुर शब्दी पाया जाई श्लोक महला तीजा मूर्ख होवै
1: सो सुनै मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखण है क्या मूर्ख का करना मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना मूर्ख के क्या लखण है मूर्ख ओ जे मुग्ध है अहंकारे मरना एत कुमाणे सदा दुख दुखी मैं रहना अत प्यारा पवै खू यो संजम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुब दे पी तरना नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सुसहना महला पहला नानक आखै रे मना सुनिया सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा काट वही तलबा पौसन आकिया बाकी जना रही अजराइल फरेस्ता होसी आए तई आवण जाण ना सुजई पीड़ी गली फही कूड़ निखुटे नानका ओढ़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहया सब आपै हर की कीमत ना पवै किस कहन ना जापै गुर प्रसादी साला ही है हर भगती रापै सब तन मन हरिया होया ओंकार गवापै सब किछ हर का खेल है गुरमुख किसै बुझाई श्लोक मला पहला संसर दान दे इंद्र रोआया परस राम रोवै घर आया अजय सरोवै भीखिया खाए ऐसी दरगा मिलै सजाए रोवै राम निकाला भया सीता लखमण विछुड़ गया रोवै दह सिर लंक गवाए।

नौ दरवाजे काया कोट है, दस वह गुप्त रखी जाय, बज्र कपाट न खुलनी गुर शब्द खुली जाय, अन हद वाजे धुन वच दे गुर शब्द सुनी जाय, तित काट अंतर चानना कर भगत मिली जाय, सब मह एक वर्तदा जन आपे रचन रचाई, श्लोक मला दूजा अंधे कह राह दस्या, अंधा होए सुजाए होए सुजाखा नानका, सो क्यों उजड़ पाए, अंधे एह न आखियन जिन मुख लोयन नाह, अंधे सही नानका कसमो कुथे जाहे, मला दूजा साहिब अंधा जो किया, साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरत, जेसो अवर ना जेसो आखे कोई, जिथे सो वस्त ना जापे,

खाना एह करे बिच उपाय सारा ना पे सार करे नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है महला पहला नानक एह जी मछुली चीवर तृष्णा काल मनुआ आंदना चेते पड़े अचिंता जाल नानक चित अचेत है चिंता बद्धा जाए नदर करे जे अपनी ताया पे लय मिलाए पौड़ी से जान साचे सदा सदा जिनी हार रस पीता गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता सब किश घर ही माह है वड़ भागी लीता अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता आपे मेल मिलायन आपे दे बुझाई श्लोक मला पहला वेल पिन्याया कत बनाया कट कुट कर खुंब चढ़ाया लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सुई धागा सीवे यो पत पाटी सिफती सीपे नानक जीवत जीवे होए पुराना कपड़ पाटे सुई धागा गंडे माहु पख क्यों चल नाही कड़ी मोहत किच हंडे सच पुराना होवे नाही सीता कदे ना पाटे नानक साहेब सचो सच्चा तिचर जापी जापे महला पहला सच की काती सच सब सार काड़त काड़त तिसकी अपर पार शब्दे सान रखाई लाए गुड़ की थे कै विच समाए तिस दा कुठा होवे शेख लोहू लाभन कथा वेख होए हलाल लगे हक जाए नानक दर दीदार समाए महला पहला कमर कटारा बंकड़ा बंके का असवार गर्भ न कीजे नानका मत सिर आवे पहार पौड़ी सो सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले सच ते आयन से सचे जिन हर खर्च धन पल्ले भगत सोहन गुण गाव दे गुरमत चले रतन रतन विचार मन वसया गुर कै शब्द भले आपे मेल मिलाए दा आपे दे वड़ियाई श्लोक वाला तीजा आसा अंदर सब को कोई निराशा होए नानक जो मर्जी वेया सहला आया सोए वाला तीजा ना किश आसा हाथ है के ओ निराशा होए क्या करे ए बपड़ी जा पुड़ाए सोए बड़ी त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन प्रभदाता दातार ने चल एह धन सास सास अरादे निर्मल सोए जान अंतर जामी अगम रसना एक पान रव रहा सरबत नानक बल जाई श्लोक मल पहला सरवर हंस तुरे ही मेला खसम एवे पाना सरवर अंदर हीरा मोती सोहंसा का खाना बगुला काग न रही सरवर जे होवे आत स्याणा ओना रिजक ना पायो उथै ओना होरो खाना ओना रिजक ना पायो उथै ओना होरो खाना सच कमाना सचो पाइय कूड़ा कूड़ा माना।

तू करे नानक सोई सेविया सदा सदा जो दे नानक सोई सेविया जित सेविया दुख जाए अवगुण वंजन गुण रवे मन सुख वसै आए पौड़ी आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेशदा गुरमुख पति आयन एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन जिस आप बुझाए सो बुझ सी आपे नाए लायन नानक नाम त्याई है वड़ी वड़े आई सोध राम कली की वार मला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक मला पंजवा जैसा सतगुर

तिमी हार रास पो गया। श्लोक मला पंजा पेड़ो मोक लाई की तियर सब रखे कुटुंबे नाल कार्ज आप सवारियन सो प्रभ सदा सुमाल। प्रभ मात पिता कंठ लाइंदा लोहड़े पालक बालक पाल दयाल होए सब जी जंत्र हर नानक नजर निहाल। मला पंजा विणत दहोर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुर वण तिण हरिया कीतिया नानकिया मनुख पौड़ी। सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोत जसा तिस बिन नासरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सुभव जल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनों बल तरै जै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलया सच मंत्र गुर मन तरै। श्लोक मला पंजवा तन सुराग सुरंगड़े आलाप सब तिख जाए तन सुजंत सुहावड़े तन सुजंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाव जिनी एक मन त्याया तिन सद बलहार जाओ जिनी एक मन एक रादिया तिन सद बलहार जाओ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्ले पाए जुरत रंग गोविंद कै हो तिन बलहार जाओ आखा बिरथा जी की हर सज्जन मेलो राय गुरपुरै मेलाया जन मरन दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अंत न काहु जाए। महला पंजवा तन सुवेड़ा घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन तन सु दिन सुजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम पार हो मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सकल संसार। पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या उना एको नाम आधार एका उन पत्या उना पिछे जग पुंजै पो गई उना प्यारा रब उना हाजो गई जिस प्रभ जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हाउ बलहारी तिन जे खस मैं पाणिया। श्लोक मला पंजा हर एक सह नाल मैं दोस्ती हर एक सह नाल मैं रंग हर एक ओ मेरा सज्जनो हर एक सह नाल मैं संग हर एक सह नाल मैं गोष्टे मुँह मैड़ा करै ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मोड़े रंग हर एको मेरा मसलती पन्नन कड़न समरथ हर एको मेरा दातार है सिर दात्या जग हथ हर एक सह दी मह टेक है जो सिर सबना सुमरथ सतगुर संत मिलाया मस्तक धर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग। मला पंजवा मनमुख केरी दोस्ती माया का संबंध वेख दिया ही भज जान कदे ना पायन बंद जिचर पैनन खावणे तिचर रखन गंड जित दिन किछ ना हो वही तित दिन बोलन अंध जी की सार ना जाननी मनमुख अज्ञानी अंध कूड़ा गंड ना चले चिकड़ पत्थर बंद अंधे आप ना जाननी फकड़ पिटन तंद झूठा मोहे लपटाया हो हो करत बेहंद कृपा करे जिस आपड़ी तुर पूरा कर्म करे जन नानक से जन उबरे जो सतगुर शरण परे। पौड़ी जोरते दीदार सही सच हाक जिनी जाता खसम क्यों लब्बै तना खाक मन मैलावे कार होवे संग पाक दिसे सच्चा महल खुले परम ताक जिसे दिखाले महल तिस न लगे ताक मन तन होए निहाल बिंदक नदर चहाक नानद नाव निधान गुर कै शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे भाग। श्लोक मला पंजा
हरणाखी कु सच वैन सुनाई जौ तो करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो छबीली पिर तैडा मन साधारण दुर्जन सहती ने हुर चायो दस विखा मैं कारण ऊणी नाही झूणी नाही नाही किसै वेहूणी पिर छैल छबीला छड़ गवायो दुरमत कर वेहूणी ना हो भुली ना हो चुकी ना मैं ना ही दोषा जित हौ लाई जित हौ लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई पागण जय पिर कृपा तारी पिर औगण तिसके सब गवाए गल सेती लाए सवारी कर्महीन तन करै बिनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण माणै रलिया सब सुहागण माणै रलिया एक देवो रात मुरारी मल्ला पंजा काहे मन तू डोलता हर मन

आवे तुद्दो भुले से जम जम मर दे तिन कदे ना चुकण हावे। महला पंजा सतगुर सिमरो अपना कट आव कट कट कट हर हर नाम जपंतिया कोई ना बंदा वाट पौड़ी।

जिस मिलया पूरा गुरु, जिस मिलया पूरा गुरु सुसर पर तारणो, जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो, जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो, जिसनो एको रंग भगत सो जाननो, जिसनो एको रंग भगत सो जाननो, ओहो

नानक जी मैं हब जाई छोड़िया हब किच त्यागी छोड़िया हब किच त्यागी हबे सा कूड़ा वे डिठे तो पल्ले तैड लागी मल्ला पंजा फिर दी नानक जियो हो फावी थी बहुत संतर पंदा ताहों सुख सुखाली सुती जा गुर मिल सज्जन मैं लद्दा पौड़ी सबे दुख संताप जा तो दो भुली है जे कीचन लख उपावता कही ना कुली है जिसनो विसरै नाओ सो निरतन कांडी है जिसनो विसरै नाओ सो जुन्नी हांडी है जिस खासुम ना आवे चित तिस जम डंड दे जिस खासुम ना आवी चित रोगी से गणे जिस खासुम ना आवे चित सो खरो अहंकारिया सुई दुहेला जग जिन्नाओ विसारिया श्लोक मला पंजा तैडी बंदश मैं कोई ना डिठा तू नानक मन फाणा कोल कमाए तिस मित्र विचोले जै मिल कांत पछाणा मल्ला पंजा पाव सुहावे जा तो थिर जुल दे सीस सुहावा चरणी मुख सुहावा जा तो जस गावे जियो पया तो शरणी पौड़ी मिल नारी सतसंग मंगल गावी है कर का हुआ बंदान बहुड़ ना तावीया मिल नारी सत्संग मंगल गाविया कर का हुआ बंदान बहुड़ ना ताविया मिंठी दुरमत दुरत सोई कुड़ाविया सीलवंत प्रदान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रताविया मन दर्शन की प्यास चरण दास आविया सोबा बड़ी शिंगार खसम जा राविया मिलिया आय संजोग जा तिस पाविया श्लोक मला पंजा हब गुण तैडे नानक जियो मैं कूथिए मैं निर्गुण ते क्या होवे तो जे वड़दा तार ना कोई जा चिकसदा जा चोवे मला पंजा देच जंदड़ी ऊन मजूना गुर सज्जन जियो तराया हब्बे सुख सहे लड़े सुता जित्ता जग सुबाया पौड़ी वड़ा तेरा दरबार सच्चा तो तख्त सिरशाह पातशाह नेचल चौर छत जो पावे पार ब्रह्म सोई सच न्याओ जे पावे पार ब्रह्म निथावे मिले थाओ जो कीनी करतार साई पली गल जिनी पछाता खसम से दरगाह मल सही तेरा फुरमान किना ना फेरिया कारण करन करीम कुदरत तेरिया श्लोक मला पंजवा सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली मला पंजवा हठ मजाहू मैं माणक लद्दा मुल ना खिदा मैं को सतगुर दिता टूड़ वन्याई थी अथिता जन पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसके मस्त कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमर प्रगासिया सो अंदिन जागा लगा रंग चर नार बिंद सब प्रम पौ पागा आत्म जिता गुरमती आगंजत पागा जिसे त्याया पार ब्रह्म सो कल मैं तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिले आया अपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहारण जिस एवड भागा श्लोक मला पंजवा जा फिर अंदर ता

सच्चे सच समाहर। मल्ला पंजा, आहर सब करदा फिरै आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उधर है, विरला बूझै कोई पौड़ी, वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरा वस तेरा कर पढ़ा, तेरा कर आनंद वधाई तुद घर, माण महत्ता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसै जत कता, नानक दासन दास, नानक दासन दास, तुद आ गए बिनवता। श्लोक मला पंजा, छतड़े बाजार सोन विच वापारी है, वखर हिक अपार नानक खट्टे सोतनी। मला पंजा, कबीरा हमरा को नहीं हम किस हु के ना, जिन एहो रचन रचाया तिस ही माह समाह, पौड़ी सफल्यो बिरख सुहावड़ा, हर सफल अमृता, मन लोचै उन मिलन को, क्यों वन्या किता, वरना चेहना बाहरा, ओ अगम जिता, ओ प्यारा जी का, जो खोले पिता, सेवा करी तू साड़िया, मैं दस्यो मिता, कुर्बानी वन्या वरना, बले बल किता, दसन संत प्यारिया, सुनो लाए चिता, जिस लिखिया नानक दास, जिस नाओ अमृत सत गोर दिता। श्लोक मला पंजा, कबीर तरती साध की तस्कर बैसा गाय, तरती भार ना ब्यापई उनको लाहू लाए। मला पंजवा, कबीर चावल कारणे दुख को मोहली लाए, संक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय। पौड़ी आपे ही वड परवार आप एकातिया, अपना किता आप आपे ही जातिया, सब किश आपे आप आप पन्या, अपनी अपना किता आप आवरन्या, तन सो तेरा था।

लीरे एक बूंद पर तन मन देव जो माते कला लीरे राव अपन चतुर्दश पाठी किन्नी ब्रह्म अगन तन जारी रे मुद्रा मदक सह तुन लागे सुख मनुष पोचन हारी रे तीर्थ बात नेम सो सांझम रब सो गहने दियो रे सुत प्यार सुधा रस अमृत हो महारस पियो रे नजर तार चुए अत निर्मल रस मनुआ रातो रे कहे कबीर सगले मद शूषह है महारसा चोरे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मुगा भो पाठी मन तारा सुख मन नारी सह समानी पीवे पावन हारा सुख मन नारी सह समानी पीवे पीवन हारा ओदू मेरा मन मतवारा वन वन चढ़ा मदन राचा।

बानारसी तप करे ओट तीर्थ मरे अगन दहे काया कल्प की जय असमेध जग की जे सोना गर्भ दान दी जय राम नाम सर तौ न पूजै छोड़ छोड़ रे पखंडी मन कपट ना कीजे हर का नाम नित नित ली जय रहाओ गंगा जो गोदावर जाये कुंभ जो केदार नाइये गोमती सहस गऊ दान की जय कोट जो तीर्थ करे तन जो वाले गारे राम नाम सतउ न पूजै अस दान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय आत्म जो निर्माल की जे आ बराबर कंचन दी जे राम नाम सतउ न पूजै मन न कीजे रोस जम न दीजे दोष निर्मल निर्वाण पद चिन्ह लीजै जस रथ राय नंद

हजार जरे सो निजर चरे जगन्नाथ सो गोठ करे चौमुख दीवा जोत द्वार परु अनत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रहे मन मान करत ना मैं गुहा महतक पद्म द्वाले मणि महे निरंजन तिर पवन धणी पंच साधन रंभायल बाजे ढुलके।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करे जगदीश सर हर त्यायो जन पग लगे रहाउ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ सारंगे तुम शरणागत प्रतिपालक स्वामी हम राखो बड़ पाप गे तुमरी संगत हर को न उदरियो प्रभ किए पत पवगे गुण गावत श्री पाद उतारियो प्रभ राखी पै जानगे

हे कृपा करो जिस पर कवदाते सो सदा सदा तुद त्याव कवन जोग कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनी रे जावे सोई जन सोई निज भक्ता जे सुपरंग लाभे साई मत साई बुद्ध सियाण जित निमखना प्रभ सरावै संत संग लागे सुख पायो हर गुण साधी गावे देखियो अचरज महा मंगल रूप किसियान नहीं दिटावे को नानक मूर्चा गुरु लाहियो तै गर्भ।

सुखदाता दुख भंजन हरा गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम करो लोभ खंड खंड की ने बिनसो मूल अभिमान क्या गुण तेरी आख बखाणा प्रवंतर जामी जान चंद कमल सन सुख सागर।

हम बार किशु न जानु हर मात पिता प्रतिपाला कर माया गन्नित मेल ते गुरा के दीन दियाला भौ मैले निर्मल होया सब किल विखार जा सोए जाला मन आनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला माली गोड़ा महला चौथा मेरे मन हर भज सब किल वे काट हर हर उधारियो गुर पूरे मेरा शीश की जय गुर बाट रहाओ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे तिस मन देवो कट काट हर साजन मेलियो गुर पूरे गुर बचन बकानो हट हाट मकर प्राग दान बो दिया शरीर दी वध काट बिन हर नाम को मुक्त ना पावे वो कंचन दी जय कट काट हर कीत गुरमत जस गायो मन उगरे कवट कपाट त्रिकुटी भूर परम पौ पागा लज पानी मटकी माट कल जो गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मातक लिखे ललाट जन नानक रस

सबके संगी नाही दूर कन करावन हाजरा हजूर हाउ सुनत जियो जास नाम दुख बिनसे सो कियो बिश्राम सगल निधार हर हरे मुन जनता की सेव करी जाके कर सगली समाए जेते बिरता गोए नाए जी जंत्र करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाके दीवान बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप।

पदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद हर समरस की साना जी गो भिन्न धन रास मेरी प्रावे कारण करना राहु सिमर सिमर सदा सुख पाई है जीवन एका मूल रव रिया सर्वत्र ठाई सुख मोह असथूल आल जाल विकार ताज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ना।

हर शान न्याय उदा तेरा प्रभु चगम मुरार कट लियो पौजल वेख में तहे जाना निरसाद बलहार माली घोड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बंध भगत बसल सदा सदा।

कर तरे चक्र बिकुंड ते आए गज हाथी के प्राण उधारी ले दुशासन की सभा द्रौपदी अंबर ले तो वारी अले गौतम नार हलिया तारी पावन केतक तारी अले ऐसा आदम जात नाम दियो तो संदाक ते आई अले सवे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाउ एकल माटी कुंजर चीटी पाजन है बहु ना नारे स्थावर जंगम कीट पतंगा करता राम समान नारी एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे प्राण वै नामा पहने कामा कोठा करको दासारे राग मारू महला पहला।

साध कीते दुख पर फुड़े, पूर्व लिखे माए सुख थोड़े, दुख अगले दुख है दुख बिहाए, बिछड़िया का क्या बिछड़ा, मिलिया का क्या मेलो, साहब सो सलाहिए जिन कर देखिया खेल, संजोगी मिला बड़ा इंतन कीते भोग, बजोगी मिल बिछड़े नानक पी संजोग, मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया, लिख दात जोत बड़ियाई, मिल माया सुरत गवाई, मूर्ख मन काहे कर सह माणा, उठ चलना खसमे पाणा रहा, तज साध सह सुख होई कर छड़ने रहे, ना कोई किश खाजे किश तर जाइए, जे बहुत दुनिया आई है सज काया पट हुंडाए, फरमैश बहुत चलाए, कर से सुखाली सोवे, हथी पौंदी काहे रोवे, कर घूमण पा वाणी भाई, पा पत्थर तर न जाई, पौ बेड़ा जियो चढ़ाऊ, को नानक देवे काहू, मारू महला पहला घर पहला, करनी कागद मन मसमाणी, बुरा भला दो लीक पए, ज्यों ज्यों कत चलाए त्यों चलिए, तौगुण नाही अंत हरि, कित चेत सके ने बाबरे यार, बिसर तेरे गुण गलियार, आओ जाली रह जाल दिन हुआ, जेती घड़ी पाई तेती, रसदा चोग चुग नित फासे, शूर समूढ़े कवन गुणी, काया हरन मन बिच लोहा, पंच अगंत लाग रही, कोले पापड़े तसूपन मन जलिया, सन्नी चिंत पई पया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमर तो देवे तो नानक त्रैसठ सदेहा, मारू महला पहला विमल मजार मस्त बसस, निर्मल जल पद्मल जावल रे, पद्मल जावल जल रा संगत संग दोख नहीं रे, दादर तू कबे न जांस रे, भगस वाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे, राव बस जल नितना बस चली अल मेर चाचा गोरे, चंद कुमुंदनी दूरो निव सासन पौकार रे, अमृत खंड दूध मद सांच तू बन चात रे, अपना आप तू कऊ न छोड़ पिसन प्रीत ज्यो रे, पंडित संग वसे जन मूरख आगम सा सुने, अपना आप तू कऊ न छोड़ सवान पू ज्यो रे, एक पख

प्राता शूर तो प्यो पी जय मिनकी चपल सिंह जोगत मन राखी उड़े नहांसन कंध शी जय पंत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन सिंह अमृत पी जे मिनकी चपल सिंह जोगत मन राखी उड़े नहांसन कंध शी जय मारू महला पहला माया मोहिना मन मुआ सर लहरी मैं मत बहुत जल सिर तर टिक साचा बखर जित मानक मन मैं मन मारसी साच न लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पह पहचान रत बाबा साचा साहब दूर ना देख सर जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख राव ब्रह्मा विष्ण ऋषि मुनि इन शंकर इंद तपे पिखारी माने हुकम सोए दर साच आकी मरे अफारी जंगम जोत जति सन्यासी गुर पूरे बेचारी बिन सेवा फल कबूना पावस सेवा करनी सारी न धनिया धन ने गुरिया गुर ने माणिया तू मानंद ने मानक गुर पकड़िया न ताणिया तू तान होम जपा ने जानिया गुरमती साच पिछाण नाम बिना नाही दा ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही साचे।

सो जाने जस बेदन हो वै प्रेम के कान लगे तन पीतर वैद के जाने कारी जियो जिन्हो साचा सिफती लाए गुरख वेले किसे बजाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का बपारी जियो राव फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर कै शव तथा चित लाए सह सेती तन खरी सुहेली तिसना तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा थारी जियो ओमे जलिया।

पूरा पला किसे आवस्ते जानिया ही सकल विकार आयु फिर माया खसम का हुआ बरते हो संसारा इंद्री तो सबल कही अतः इंद्री के ते हो आपे खेल करे सब करता है साबू जे कोई गुर प्रसादी एक लिब लागी दो दात दे बनासी जो तुस भाणा सो

हर हर कथा सुनाई प्रभ गुरमतार देशमाणी जप हर हर कथा बडभागी हर उत्तम पद निरवाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरे नाम समाणी मन मेरे हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा ने सदा कर गुरमुखा कथ कहानी राओ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाया कथ कहानी संजना मिल पाया सुन कथ कथा मन पहाणी मेरे मन तन नाम धार हर मैं मेली पुरख सुझाणी गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सो समाणी मुड़भागी गुरु सेवे आर पाया सुगुर सुझाणी मन मुख भाग भी हुनिया तिन दुखी रहन बिहाणी हम जाचक दीन प्रभ तेरिया मुख दीजे अमृत बाणी सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुर सुजाणी जन नानक शरनागती कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया बुढ़भागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजै गुरु शब्द हर चाख।

तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे अर्थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे, सब खिल विख काटे हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो, हर चलदिया नाल सिखाए जियो। जिसनों कृपा करे सो त्यावे, नित हर जप जापे जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर सियावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निरपौ निरंकार सतनाम, जग मैं श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जमकार थे मारो, हर सेवक नेड़ न जाई जियो। जिस उपर हर का मन मानिया, सो सेवक चौं जुग चौं कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जमका कर खाई जियो। सब मैं एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिसा राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छडाई जियो। हो अंधन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सवे निस्तारे।

कुलिया कर्म कृपा पही ठाकुर कीर्तन हर गाई श्राम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली थाई अब मोहे जीवन पद भी।